हेलो जजुलपा जजुलपा जजुलपा तैले ज्याजो नेवा दबो नेन्त लसना दिमसित दुनगुला निसे हनुमान नप लस्क सय बादन जी राजेन्द्र डंगोलिया थोना पसदो टेक्निकल असिस्टेन्ट निम्ति सुरेश जी ले ज्याजो ख जी वो सी क्लाकर जी यपि क्लाकर सरसब निगो तो ज्याजो दास पाई मुकु वेकअप सा हिन्दीको सृजना अथे वेकअप सा हिन्दीको संघर्ष अनुभव योगदान यता सम्मान दिसे थमे ज्याजो बकना वेसना जी मनोतयगु जीवन हज जीवन अलि जन्मय खलाबले सुन्न छु अर्थ दु महत्व दु उद्देश्य जन्म व्यर्थमको जी सक्षम थग कथा कर्म यन्चनकदो कर्म खेल अभ्यास संघर्ष यहाँ लक्ष्य अचुन थगे कथा फोङ्गे त कुता यन्चनकदो भाग्यना साप्यसँग दु जीव ल्युने न्याने गुलिन दृश्य अदृश्य शक्ति तु पोस्पोल पिन्छन चिता जीवको कर्म यता फोङ्गे त अपदेव बिगो जन ज्यासँग दु चित गुल्न बालुको पिङ्गो मतितेमी सक्षम जे जीमा भिजीमा थे मतितेय थोना जी वचन खा लेसँग मे थो जनावेको दक्षिणपन्त नस दिया त हजुर नस दिया त लुमङ्का चुयातोको नातकजी मर्जमा चुयातेको थो मे जो भकिया स्वर्बद्ध अथे थोना जो भकिया लेबद्ध जीवित मे थो बजाउँको छ आइतर थो मे लसुस कथा

0: कार्यालय
1: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सह विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा।

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास।
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: जीवन गंगा।